सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की

0: रोतों आइए।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: 45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
5: सुनते रहो GFM 90.8।

गई। तो जनाब नौजवान नस्ल उसको कहां से कहां लेके जा रही है, क्या कर रही है, ये तो आप हमें बताएंगे फोन कॉल करके। और कुछ हम रोशनी डालेंगे जनाब, 03000113488 हमारा नंबर है। तो क्यों ना हम शो का स्टार्ट लें अपने एक जबरदस्त से कौमी नगमे से। हम प्ले कर चुके हैं जनाब एक बहुत जबरदस्त सा कौमी नगमा हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसे यकीनी तौर पर आप सुने। और इस कौमी नगमे के साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए GFMH8 नेटवर्क पर आपके अपने शो आई लव यू ऑल में। तो हम वापस आते हैं इस मिनी नगमे के बाद।

0: यू दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है तेरा एहसान। बिल्कुल जनाब, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ये एहसान है कि उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान जैसा एक अजीम मुल्क बनाया और आज हम उसमें सांस ले रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आज कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह आज हमारे दरमियान मौजूद होते तो वो हमसे क्या कहते। शायद वो हमसे कहते, अपने मुल्क से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं अपने किरदार से करो, ईमानदारी इख्तियार करो, अपने फराइज अदा करो, कानून का एहतराम करो, दूसरों के हकूक का ख्याल भी रखो, तालीम हासिल करो और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार जरूर अदा करो। तो जनाब, ये सारे सवाल होते जो कायदे आजम हमसे जरूर कहते, और एज अ गुड ह्यूमन बींग, एज अ अच्छा इंसान, एज अ प्योर पाकिस्तानी, एज अ सच्चा पाकिस्तानी, हम लोग भी अगर अपने आप से ये सवाल करें कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो हमें करनी चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो हमें इनको दूसरों तक फैलाना चाहिए, और प्योर पाकिस्तानी होने के नाते हमें ये सब चीजें दिल से करनी चाहिए। तो जनाब, हम लेते हैं शो की कॉल्स और साथ साथ आपको शामिल प्रोग्राम भी करते हैं और आपसे कुछ सवाल भी करते हैं। 03000113488 हमारा नंबर है, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ साथ कौन आने वाले हैं। आप हमें कॉल कीजिए 03000113488 और लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही, आई थिंक। चले जी, कोई गल नहीं है, आप हमारे साथ रहिए, शाम के 7 बजे तक हम आपके साथ हैं, और लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ साथ रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपकी कॉल लें और आपको शामिल प्रोग्राम करें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
1: हेलो,
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अदा केर प्या गल हायो, किथा प्या गल हायो? मेहरापुर केड़ो शहर भा?
1: खुर्शीद
0: अली शहर साहब, केड़ा हाल चाल है, ठीक ठाक आयो? सफा
1: दुआओं अल्हम्दुलिल्लाह,
0: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अदा आज असा कायदे आजम डे जे हवाले से तमा को कुछ पूछना चाहू था, पूछी सकू था भा? अदा अज कायदे आजम जो है डे मल्हायो पे वे, अज कायदे आजम जो इंतकाल थे, असा के पाकिस्तान जेड़ो अजीम मुल्क दिनो है, तो असा इन अजीम मुल्क में छा था क्यों उनकी तरक्की जो लाए उनके संभालने लाए?
1: सर कोशिश क्यों तालीम हासिल क्यों अजकल इंसान अड़ा थी माना तकरीबन असा त वड़े कॉलेज में माना पान पढ़न पाया कोशिश पा कर इंसान तो पान सीखो वो मूँ टिन कें
0: बेन के भी जरूर फैलाए उन इल्म के सुठी सुठी गाल पाकिस्तान एग्जैक्टली एग्जैक्टली
1: इस्लाम में तमाम घटी है जरूर जान होंगे।
0: बिल्कुल, तालीम तो तालीम है, दीनी भी तालीम है, दुनियावी भी तालीम है, या बई तालीम असा पांजे बारन के जो है हासिल करने जोर दियूं और सख्ती के उन तालीम जरूर हो।
1: हाँ बिल्कुल, कुरान
0: बिल्कुल बिल्कुल, छो तो पाकिस्तान जो है इस्लाम की बुनियाद से चाहो है, तो यह तो जरूरी है असा सभी लाए जाए, तो दीनी भी तालीम है, दुनियावी तालीम जरूर डाल पांच बार बिल्कुल बिल्कुल। उनके खराज तहसीन पेश क्यों, उन्हें ख्वाबन से अमल क्यों, उन्हें गालियन से अमल क्यों, तो यो ही वही गाल होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शर साहब ये बुधा, अज तुम गानो कड़ो बुधन चाहो था, तक वह गाना तीन फरमाइश से बुधाइंदा से कड़ो? वाह, थोड़ो गुनगुनाया दियो, तो वरी चार चंड लगी वे ना
1: गुनगुनाया?
0: हाँ गुनगुनाया, अगर गुनगुनाया चाहो था
1: जी। हलो
0: भले असां पंहिंजे कान बंदि करे छॾियासीं, कोई मसु न आहे। न तव्हां माशाल्लाह काफ़ी सुरीला सुरीला आहियो, तव्हांजी आवाज़ खां ई ख़बर पइजी थी। पर तव्हांखे गानो ॿुधाईंदासीं, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
1: सभ खां पहिरियां बाबर साहब ऐं
0: जी जी
1: जेके बि दोस्त ॿुधी आया आहिनि सभिनीनि खे मुंहिंजे भरां सलाम हुजे।
0: वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जनाब शर साहब, असां सभिनी सां गॾु शर साहब जेको तमामु घणी सुठी ॻाल्हियूं पियो करे था, असांखे पंहिंजे ॿारनि खे इहो दीनी बि तालीम जेको आहे ॾियणु खपे ऐं दुनियावी तालीम बि ॾियणु खपे, त इहा तमामु घणी सुठी ॻाल्हि कई।

0: असांजे शर साहब ऐं जेको मेरा पुरखो हुयो त हाणे ॾिसूं था सभिनी सां गॾु लाइन ते केरु आहे। तव्हां बि असांखे कॉल करे सघो था 03000113488 ते, त जीअं तव्हां पंहिंजी फरमाइश बि पूरी कराए सघो ऐं अॼु जे शो में पार्टिसिपेट बि करे सघो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केरु असां सभिनी सां गॾु मुंहिंजा जानी मोहम्मद अली साहब, कहिड़ा हाल चाल अथव? ठीक ठाक आहियो? अच्छा, मोहम्मद अली जरवार, मोहम्मद हनीफ जरवार,
1: मोहम्मद अली जरवार,
0: अमार पवे ने सिग्नल के मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद अजीज जरवार, सॉरी, ओके ओके, मोहम्मद अजीज जरवार साहब, कहिड़ा हाल चाल आहिनि? ठीक ठाक आहियो? सफ़ा सफ़ा मस्त। मौला तव्हां इहो ॿुधायो त पाकिस्तान कॾहिं आज़ाद थियो? वाओ, ग्रेट यार, जबरदस्त। अहिड़ा पाकिस्तानी मूंखे वणंदा आहिनि जंहिंखे तमामु सुठा सुठा सवालनि जा जवाब बि ईंदा आहिनि। तव्हां माशाल्लाह हिकु जबरदस्त पाकिस्तानी आहियो, त इहो ॿुधायो पाकिस्तान जी तरक़ी तरवीज़ लाइ असां सभिनी खे छा करणु खपे? जबरदस्त जबरदस्त, राति ॾींहुं महिनत करणी खपे। तव्हां छा कंदा आहियो अदा? माशाल्लाह माशाल्लाह, तव्हांजा भाइर ऐं ॿार ॿार आहिनि, उहा तालीम हासिल कनि था? जबरदस्त माशाल्लाह, प्राउड ऑफ यू। ऐं इहो ॿुधायो, आबदा परवीन प्ले थो कयां, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? कहिड़ो कहिड़ो शमन जो तव्हांखे मां हिन जे बाद ॿुधाईंदुमि? वाह वाह वाह वाह, इहो तमामु घणो ख़तरनाक गानो आहे, ॿुधाईंदोमांव तव्हांखे। पर इहो गानो हाणे कंहिंजे नाले करणु चाहियो? इनशाला मुंहिंजा प्यारा भाउ, तव्हांखे गानो ज़रूर ॿुधाईंदासीं। असां प्ले करे चुका आहियूं ज़बरदस्त ट्रैक, हिकु अलाह कलू में डरदी, हिकु मौला कलू में डरदी। ॿुधो ऐं खोड़ सारो एंजॉय कयो।

It's 5:30 p.m. This time check.

छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल।

0: सेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरु सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरु सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: फिर से नोट डाउन कीजिए 03000113488। और जनाब इसके साथ साथ सखर की गर्मा गर्मी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ कम हुई है, और जनाब कम होगी तो सर्दी आएंगी, और सर्दियों की थोड़ी थोड़ी सी खुशबू भी आ रही है मुझे कि सर्दियां अब पहुंचने वाली हैं और गर्मियां अबाउट टू एंड है। तो 38 सेंटीग्रेड आज का दर्ज हरारत है जो कि हम आपको बता रहे हैं। सखर कॉल लेते हैं, शुक्रिया एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम साईं, पेरन ते हथ साईं
0: साईं साईं साईं दिल ते हथ रखी तवा के भाई हथ बधी करे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक
1: अलहमदुल्ला
0: सब ए वन आ तवा बुधायो पांजो नालो किथा पे गलायो केर पे गलायो।
1: बस तवा सुने तो पण अमीर बख्श संग आ मिस्त्री गोट का।
0: अमीर बख्श साहब केड़ा हाल चाल है मिस्त्री गोट का?
1: सब खैर लगो।
0: अच्छा मिस्त्री गोटा, मिस्त्री गोटा,
1: हाँ मिस्त्री गोट मेरा।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, सब मिस्त्री जरा मानू रहन था तवा जरा।
1: हाँ
0: वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये तो बुधायो छा पे चाहो तो गर्मी तवा जे वधिक आ?
1: गर्मी असो रात जो थद थी बाकी कराची सांगर मुल्क थदो थी तो गाल बुधाई।
0: अरे यार तवा तो मिस्त्री जड़ा मानू आयो तवा तो भर में भला गर्मी छोती पे अड़ी।
1: बस अला खैर कहो, बस अला खैर टे पंद्रह दिन मौसम सही थी वे नसीब की गाल
0: नसीब की गाल बिल्कुल अला साई कहो तो थद थी वी छो तो रात अला थद हूँ माशाला मौसम जो है सर्दी जो अचान वो है दिल जाए क्यों बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: यो बुधायो अदा साईं मुझा प्यारा भात गानो हाने बुधाय तो सोणिया अखिया तो असा एकड़ी लिसनर फरमाइश कई है हकीम मसूद जमाली साहब पोए भी प्रोग्राम में फरमाइश की ना हल्ला सके से हाने चौ उन दिल न था टोड़े उन जो
1: साईं हाने मते फौजिया सुमरे जो कला से यो जिन जो सालो मिठा मानु छड़े या दोस्त शामिल करा ने।
0: हां हां
1: अला दद मार मोहम्मद अली मार पठान खान पटके अदरा बंगला कम को पोपट पटे मोर पिता जी।
0: अच्छा बस
1: ओके
0: ओके मुझे प्यारा। तो जनाब हम गाना प्ले करते हैं बहुत प्यारा सा सुनिया किया, इस गाने को सुनिएगा सुंदरी का जी एफ एम जी नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।

0: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: 435 address Tando Ghulam Ali Road Mathli.
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
0: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियन की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
0: रोजानो सुबह

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ये बहुत गलत तरमीम थी. ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे. ये तो जियाउल हक ने इस आईन के अंदर ये अजीबो गरीब चीज डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे. ये गलत है. मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए.
4: सूबन की सरहदों बाबत कौमी असेंबली आइनी तरमीम नथी करे सके. तरमीम लाए सूबाई असेंबली में बभांगे टे की अक्सरियत जरूरी है. जियाउल हक अठी तरमीम जरिए आइन के तब्दील कयो हो जैंके दुरुस्त थियण घुर्जे. सूबन की सरहदों में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सके. सदर भी तरमीम से सूबे की मंजूरी बिना सही नथो करे सके. कराची में मीडिया से गालाईंदे सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो चवण हो तो जडे कौमी असेंबली.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अनु सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो नथी आण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पानी बिजली वाली वजारत जी ना हिली है पाकिस्तान में गवर्नर
4: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो GAFM 90.8।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: के कोर में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन चार दहशतगर्द मार्जिवे दहशतगर्द में अफगान खारजी अब्दुल्ला भी शामिल जरियन मौजूद मार्जिवे अफगान दहशतगर्द अब्दुल्ला वलिद गुलाम होस अफगानिस्तान के सूबे लोगर जो रहवासी हो खारजिन से गड कम कंदो हो मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन संदस कारोबारी साथी एहसान अनीस शमशी के तलब करे वरतो मेजर शहरियार अकाउंटेंट उमेर के भी नोटिस जारी कमीशन मीर रजा के मुबैना कर्जदार असद अली भट्ट उस्मान ए हसन तनोली के भी नोटिस जारी अदालती कमीशन जो चवण है ऑस्ट्रेलिया में होजन सबब हुसैन तनोली जो बयान वीडियो लिंक जरिए रिकॉर्ड किया वो कमीशन सभी फर्दन के 15 सेप्टेम्बर से पेश थे नोटिस जारी कर छाया तालीम खाते में पीएसटी ए जीएसटी ते वेटिंग उम्मीदवार बाबत इजलास तरफ सिंध असेंबली के स्पेशल कमेटी जो बो इजलास 15 सेप्टेम्बर से इजलास में इंतजार कदड़ उम्मीदवार के भर्ती बाबत फैसला क्या वा सूबाई वजीर सियाउल हसन लंजार सैद सरदार शाह अली खुर्शीद ए बया शिरकत कदा डेरकी में नाए क्लास में पढ़ंदड़ शागिर्द आसिफ समेत जो लेबर कॉलोनी में गोलियों लगल लाश हथायो है पुलिस है तो वाकई के मुख्तलिफ रुखन का जांच कर रहा हूं हकीकतू जांच मुकम्मिल थे बाद ही सामू इंदू नींगर जो खानदान कुछ महीना पे लेबर कॉलोनी मुंतकिल थो दादू में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारज वेल नादिर जमाली वारे केस जो सिंध हाई कोर्ट फैसलो बुधा छो वारसन की दरख्वास्त 15 अहलकार खिलाफ केस दाखिल करण जो हुकुम ब डीएसपी ए 3 SHO समेत 15 अहलकार खिलाफ FIR दाखिल करण जो हुकुम अगुणे डीएसपी सुल्तान चांडो इंस्पेक्टर कुर्बान कुमरानी समेत बेन के नामजद करण जो हुकुम 8 महीना अग पुलिस जानायो हो तो नादिर जमाली डोहारी हो मुकाबले दौरान साथियों की फायरिंग में मारज वो हो नओ दंबालू में आपाशी सब डिवीजन के पुछले में पानी कोर्ट खिलाफ आबादगार एहतजाज आबादगार समय एकड़न से बीठल फसल पानी न मिलने सबब सड़ी रो है गुजरियल बिन महीन का जर्क्स ए मंगार शाख के पुछड़ी में पानी न पौतो इख्तियार नोटिस वन कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के धमकी देने वाले केस में गिरफ्तार जवाबदार 3 दिन की जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले प्रोफेसर आरिफ साकी के धमकाने वाले केस की बुधनी मलीर की अदालत में थी अदालत जवाबदार के केस में बरी करने वाली दरख्वास्त रद्द कंदे रिमांड से पुलिस हवाले किया कोटड़ी में बोलाड़ी म्यूनसिपल कमेटी जे सैनिटरी वर्कर्स पारा सिंध सरकार पारा ऐलानियल पगार न मिलने खिलाफ कमचर हड़ताल डीसी ऑफिस आडो धरणो अगवाणन मौजूद बजट में सरकार पारा मुलाजमन जो पगारू वधाई वयू आन पर म्यूनसिपल इख्तियार 2 महीनों का वधायल पगार पगारू जारी कयू वन शादाद कोर्ट में वधंदड़ बदमनी ए मंशात खिलाफ एसटीपी जो एतजाज सिंध तरक्की पसंद पार्टी तरफा कंबर शादाद कोर्ट जिले अंदर वधंदड़ बदमनी जुआ मंशात ए स्मगलिंग खिलाफ रैली कढ़ी वही धरणो वो अगवाणन चो है कंबर शादाद कोर्ट जिलो बदमनी के वर चढ़ी वो है अमुन बहाल कराया वे

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
4: White Ash Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
6: के 23 सितंबर ते कमेटी इजलास में घुराइण जी हिदायत करे छडी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन चयो त लोड शेडिंग पानी बिजली वारी वजारत जी नाअहली ऐं पाकिस्तान में गवर्नेंस जी नाकामीअ जो आला तरीन मिसाल आहे। एस्को, सेपको ऐं के इलेक्ट्रिक जहिड़ा इदारा अवाम खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण में नाकाम थी चुका आहिनि। सिंध में 18 कलाक बिजली बंदि कई वञे थी। इहो मसइलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बि भरपूर अंदाज़ में उथारियो वञे। रुगो बिजली न पर अवाम खे गैस ऐं पाणीअ जा मसइला बि दरपेश आहिनि। स्पीकर बिजली कंपनीज़ जे सरबराहनि खे घुराइण जी हिदायत कंदे घरू वज़ीर खे चयो त उन ते अमल दरामंद अमलदार न आया त अव्हांखे तकलीफ़ ॾींदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन ख़िलाफ़ कार्रवाई करण वारी सऊदी अरब जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एग्ज़ेविस मूजिब सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान सदर डोनाल्ड ट्रंप सां फ़ोन ते राब्तो करे हुसैन ख़िलाफ़ कार्रवाई जी दरख़्वास्त कई हुई, जेका ट्रंप रद्द करे छॾी। ट्रंप इंतिज़ामिया मूजिब अमरीका रुगो सऊदी अरब खे यमन में हदफ़नि बाबति ॼाण फ़राहम कंदो। वॉशिंगटन जो हुसैन ख़िलाफ़ हिन वक़्तु फ़ौजी कार्रवाई जो इरादो नाहे। यमनी हुसैन पारां सामूंडी गुज़रगाह बाब अल मदब ते कब्ज़ो करण जी दावा। आलमी वापार में वॾी रंडक पैदा थियण जो ख़दशो। यमनी हुसैन मूजिब बाब अल मदब वेझो अल अमीरी फ़ौजी अॾे ऐं ज़कर बेट ते कंट्रोल करे वरितो आहे। हाणे बाब अल मदब खे बंदि करण जो अख़्तियार बि हुसैन वटि आहे।

अमरीकी सदर ईरान जंग पंज सदारती दौर में खत्म थियण लाइ पुरो में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग डिघे मुदे ताईं जारी रहण जो इम्कान आहे।

0: पीटीआई जमियत उलमा इस्लाम के 27 सेप्टेम्बर वाली लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दई छी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की क्यादत में पीटीआई वफद की जेयूए सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 27 सेप्टेम्बर वाली मार्च कानून की हुक्मरानी आइन की बालादस्ती तहरीक तहफुज आइन पाकिस्तान पारा एपीसी कोठाने के ख्याल की डे वट। बैरिस्टर गोहर 27 सेप्टेम्बर वो एहतजाज मुलतवी कर का भी तजवीज़ गौर हेठ ना है। नई वरी हुकूमत से गाल एहतजाज की क्यादत सुहेल आफरीदी कह जैमें सब सियासी पार्टियों शिरकत क्यों। घरू वजीर मोहसन नकवी से बैकडोर चैनल्स से राबो रो है तफसील नथा बुधाए सकजन। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो चवण हो तो मुलाकात दौरान नवन सूबन के क्याम एपीसी समेत मुख्तलिफ मामलों से गालबोल थी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के 27 सेप्टेम्बर से ऐलानियल लॉन्ग मार्च खिलाफ दरख्वास्त बुधनी एडवोकेट जनरल के पी दरख्वास्त की मुखालफत कर छी। पीटीआई ए के पी के वे वजीर के दुर बढ़ाने की इस्तद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो के पी के चीफ सेक्रेटरी आई जी के हल्फी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

सुनते हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अच्छा,
1: मैं शुरू से सुन रही हूँ आपका शो। हाँ,
0: बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया नवाजशें। क्या कहना चाहिए,
1: सिंधी भी शायरी समझ में आती है?
0: सिंधी भी आती है समझ में?
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा जी, तो सुना दें आज कुछ, आज कुछ सुना दें कोई
1: सॉन्ग पर चला थोड़ा सा खबरनामा आ गया था बीच में।
0: अच्छा, आज कोई सुना दें हमें कोई सिंधी में शायरी या उर्दू में?
1: आवाज अच्छी नहीं है भाई
0: शायरी के लिए गाना थोड़ी पड़ता है, आप नसर में सुना दें ना, नज़म में ना सुनाएं।
1: एक शेर सुनाते हैं।
0: जी
1: सुनाते।
0: इरशाद।
1: खिला ही रहता है हरदम गुलाब की सूरत।
0: अच्छा।
1: खिला ही रहता है हरदम गुलाब की सूरत।
0: जी।
1: आज आपका चमन की फिजाओं जैसा है।
0: क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, लाजवाब।
1: और आज अताउल्ला ईसा खलवी का सॉन्ग सुनाइएगा।
0: आज अताउल्ला ईसा खलवी का कौन सा ट्रैक सुनना चाहेंगे?
1: आओ तो सही,
0: आओ तो सही। प्रोग्राम सुनती रहे, शामिल लाजमी करेंगे। बड़ी मेहरबानी नवाजशें, थैंक यू।
1: मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम।
0: वालेकुम सलाम, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।
1: अल्लाह।

दोस्तों, कॉलिंग का सिलसिला जारी है और आज जो है कि मिक्स में उर्दू सिंधी शायरी भी हम आपको सुना रहे हैं और ट्रैक भी शामिल कर रहे हैं, तो कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैर किता खान? मारे चले उसने हमें एक नुक से महरम से मुजरिम कर दिया। आवाज़ नजर तो क्या, उसने हमें एक नुक्ते से महरम से मुजरिम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे। असा बावफा सर रहा ऐ हमा बेवफा करे चलियो साके सरदारी ऐ गरीब। बहरहाल माशाल्लाह ॾाढी खुशी दे दी अवां सां ॻाल्हि ॿोल करे। फरमाइशूं कुझु रहिजी बि वेंदियूं आहिनि, कुझु पूरियूं बि थींदियूं आहिनि ऐं प्रोग्राम ॿुधो था, हिन लाइ लख थोरा थी सघे थो। अव्हां जे दम सां असांजो प्रोग्राम हले थो ऐं अव्हां जूं असां कीअं था इहे टारे सघूं। फरमाइशूं प्लेलिस्ट में शामिल करे छॾूं था। मुमताज़ लाशारी जो कहिड़ो गीत प्यारा? सॉरी, अव्हांजो आवाज़ कटिजे पियो। थैंक यू।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 10 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har dia josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: GA FM 88.
2: Sindh ki awaaz.